0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ लाणी ईशे जुखा काले
1: हेलो
0: हेलो हेलो शेंगबो आ हेलो शेंगबो
1: हेलो
0: हेलो शेंगबो ए
1: अच्छा
0: उजो पुई थी।